अपने ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, पत बिल्कुल लिए कर अपने सगल कल्प नमस्कारो, सगल कल्प नमस्कार।

Addigra addasszam el. Acsánk rájénu jág hoi. A rájéné ki takhe? Rani vada palng khali pe. Pai saab. Pai Gurdas ji likhde. रानी वाला पलंग खाली है, थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले रानी नू राजे ने नहीं तकिया, तब भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है, अद्धी रात दा समा रानी किधर चली? राजा उठिया महल दे अंदर रानी नू लबन लग गए सारे कमरे वेखे पर रानी दिस ना आवी मन विच वरत गई है तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच रानी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे मंदे भी आउन लगे रानी दा मेरे नाल प्यार दा बड़ा है पर अधी राती रानी दा महल विचों है राजर होना ए ता मैंने तोखा दे दी इना सोचा ते दलीला राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई दिन चढ़ेगा जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया रानी अपने पलंग ते लेटी हुई राजे ने आवाज दी रानी ए उठ रानी उठी राजन हुक्म करो राजे ने पहला सवाल कीता रानी ते के रानी ए सच दस तू राती किथे गई से अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी रानी सोचन लगी जे मैं सच दस दी हां ता जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे तो रानी रोज किथे जांदी सी आई साहब जी लिखते साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरु रोज सत्संग ही जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीं होवे चाहे हनेरी कैसा भी वेदर क्यों ना होवे रानी तारा रोज नितनेम ना जांदी सोचिया जी सच बोल दी ता हो सकता है राजा सत्संग तू रोक दे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग मेरे जीवन दा निशाना ही गुरु दी वाणी रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता ये प्यार दी निशानी ये प्यार है रानी सोच राजे ने फिर किया रानी बोल तू राते किथे गई से ये झूठ बोल दिया तो पति परमेश्वर है स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति ये सच बोल दिया तो सत्संग तू विछड़ दी पर रानी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग जिस तरह मच्छी पानी तू बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होवेगी। हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी। तो आओ हम आनंद सावधा पाठ

0: जो सास गिरास तिराए मेरा हर हर सोमुर से गुरु मन भाव जनु दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: जन नानक तू मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अब नाम जपावे जन की

सावा नित खड़ी मुंजो बनबाली राम राजे तार गुर हर मार जाली मेरे मन का नाम अधार है खूनी जाली जन्नान सदगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला सत श्री पत्र विचार बसे से देखो

सब्दं ज्ञान सब्दं वेद सब्दं ब्राह्मणे खत्री सब्दं सूर सब्दं शूद्र सब्दं प्राकृते सर्व सब्दं एक सब्दं जे को जाने देव नानक तंका दास है सोई निरंजन दे एक सब्दं सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा।

సో ఇసే ఎక్స్పీరియన్స్ ను జదం కబీర్ జీ నే ఎక్స్పీరియన్స్ కీతా తో వీ బహుత్ హైరాన్ హోయే. కబీర్ జీ హైరాన్ హోకే శబ్ద లిఖదే హన్ ना ए मानस असी कहने हां आई एम ए ह्यूमन बीइंग मैं मानस हां बट कबीर सेज ना ए मानस ये ते मानस भी नहीं है ह्यूमन बीइंग ते सी एस फॉर्म नु आखदे हां ना पर जिस फाउंडेशन दे उते ए फॉर्म खड़ी है एग्जिस्ट करदी है ओ जो एनर्जी है जां लाइफ करंट है विच इज मेकिंग इट हैपन कहते वो तो मानस नहीं ना है वो मानस नहीं है वो ह्यूमन नहीं है नीदर इट्स मेल नॉर इज फीमेल ना ए मानस आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ कबीर सेज ना ए मानस ना ए देव ना ए कोई देवी देवता है ना ए जति कहावे से हो कई बन जाते हैं जति अपने आप से लेबल लगा लेंगे कि मैं जति हाँ कबीर जी कहते हैं जति भी नहीं एक गृहस्थी भी नहीं है जति भी नहीं ना ये जति कहावे से हो ना ये जोगी ना अवधूता ना इस माए ना कहूं पूता मेरे ट्रू सेल्फ दी ना कोई मां है ना कोई पुत्र है ना इस माए ना कहूं पूता जो क्वेश्चन में तो पूछा गया है कबीर जी हैज ऑलरेडी रेज्ड दैट क्वेश्चन सवाल पूछा है Where does it exist within the body? Kabir ji, aap is gal layi, is mystery layi, sawal uthande han bani de vich, ya mandir mein kaun basai? Ya mandir mein kaun basai? Is mandir ch kaun rehnda hai? As far as ke kithe rehnda hai, bani kehndi hai, taaya andar jag jeevan data vase. सारी दी सारी काया दा कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जिथे वो नहीं बट उन्हें लोकलाइज नहीं किया जा सकता किसी जगह कि वो इत्थे ही है क्योंकि फिर तो उसनों सी लोकलाइज कर देता कि वो इत्थे है वो तो इत्थे भी है और उन्हें गैलेक्सीज भी है जिन्हां तक इंसान दी हाले अप्रोच भी नहीं हुई फिर उसनों सी लोकलाइज किवें कर रही है वो लोकलाइज करने वाली चीज नहीं है जो सी कह रही है वो ऐस जगह च रहिंदा है हां उसनों सुरती अनुभव कर दी है लेकिन है वो बॉडी दे पूरे शरीर दे एक एक जर्रे जर्रे एक एक सेल दे विच समाया होया है कबीर साहब आप वंडर करते हैं या मंदिर में कौन बसाए या मंदिर में कौन बसाए तंग का अंत ना कहू पाई कहते ना एक गिरही ना उदासी कहते मेरा रियल सेल्फ ना गृहस्थी है ना उदासी है ना ए गिरही ना उदासी ना ए राज ना भीख मंगासी ना ए राजा है ते ना ए भीख मंगा बैगर है ना इस पिंड ना रख तू राती कहते इन किमें कह सकते हो कि आई एम ह्यूमन फॉर्म आई एम ह्यूमन बीइंग सम पीपल से दैट If we ask, what are you? They will say, I am a human being. But look at the Gurbani's statement. Oh, can they, na is pind, na is da ko shareer hai. Neither it has a body, nor it has blood. Na is da ko pind hai, shareer hai, na is de andar ko blood hai. Na is pind na raktu rati, na e brahman na e khati. Na e brahman na e khatri hai. Is di ko zaat nahi hai. असी अपने आप ते लेबल्स लगाए हन असी अपने आप नु आइडेंटिफाई करते हां कि मैं आ हां दैट इज ऑल फॉल्स दैट इज ऑल अनट्रू इल्यूजन पर ओ कहंदे हन एदी कोई भी जात नहीं है क्योंकि ओ एक ही है सबना दे विच है और हर जगह दे विच है ते उस दी जात दा उसे नु ही पता है उस दी जात की है और साडी भी सबना दी जात ओही है जो उस दी जात है क्योंकि ओही साडे विच है ना ए ब्राह्मण ना ए खाती ना ए तपा कहावे शेख
ना ए कोई तपा है, ना ए शेख है, ना ए जीवे ना मरता देख, ना ए जींदा है ते ना ही इसनु किसी ने मरता देखा है, वो आप ही जानता फिर वो की है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज है, उस मिस्ट्री को जान नहीं सके। कहते ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, कहते जो कोई बंदा मर जाता ना तो वह सोचते हैं कि यह मर गया, कहते उन्होंने नहीं पता कि जो चीज पहला जिंदा सी वह हूं भी उतना ही जिंदा है, सिर्फ जड़ा मकान सी वह टह गया, पर मकान दे विच रहन वाला होर मकान चले जाएगा, जो होर मकान चले जाएगा, मकान बदलिया जाएगा, लेकिन मकान जो जिंदा सी कहते रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो हूं भी जिंदा है उतना ही, किसी और मकान चोएगा ना। ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे अपनी पत खोवे, कहते वो अपनी पत खोदा है, तो वो रोई जा रहा है कि वो मर गया पर वो जिंदा है, वो तो उसे दी तो हासो ही नहीं होनी है, जो रोवे सोई पत खोवे। अखीर कबीर साहब कहते गुरु प्रसाद मैं डगरो पाया, फिर गुरु की गल आ जाती है कि गुरु की कृपा दे नाल ए राज ए रस्ता मैनु प्राप्त होया, क्योंकि गुरु नु पता है मैं की हां, और गुरु ही ए सीक्रेट रिवील कर सकता है, और गुरु ही इस सीक्रेट नु रिवील करन दे दरम्यान जड़े जड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, जड़ियां मुश्किलातां हैं, उन्होंने टैकल कर सकता है। कहते हैं गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, गुरु की कृपा दे नाल कहते ए अपना रियल सैल्फ रियलाइज करन तो बाद की हो गया, जन्म मरण दो मिटवाए, जन्म मरण मेरे दोने खत्म हो गए, क्योंकि रियल सेल्फ ना जमदा है ना मरदा है। जितनी देर तक मैं अपने आप नू शरीर समझदा हां, शरीर दिया इच्छावां हन, वासनावां हन, तृष्णावां हन, मोह ममता है, उतनी देर तक मैं आंदा हां और जाना हां। जदों रियल सेल्फ असल आपा चीनिया गया, असल आपा पहचानिया गया, कहिंदे जन्म मरण दो मिटवाया, फौरन कहिंदे मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। तो अखीर च आखदे हन कहो कबीर ए राम की अंश, ए उस प्रभु दी ही अंश है, जिस तरह समुद्र दे विच्चों निकालिया होया एक पानी दा ड्रॉप समुद्र दा ही हिस्सा है, इसे तरह ए साडे शरीरां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी सुपर कॉन्शियसनेस दा एक ड्रॉप है, लेकिन जिसनू इस शरीर दे विच आन करके एक वहम हो गया कि मैं आ हां, जदों इस वहम नू तोड़ दिता जाएगा उदों ए जो है जिस दा है उही बन जाएगा, अते उसे दिया तमाम क्वालिटीज जो हैं वो इस दे विच आके मौजूद हो जाएंगियां। आज दे कीर्तन दे विच आप जी की सेवा च ए अर्ज कीती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मनाना सी, ते जिस रेफ जिस लड़ी च कीर्तन चल रहा सी उसे लड़ी च ही इसनु मैं पेश करना चाहता सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपना सैल्फ रियल सैल्फ डिस्कवर करन तो बाद अपनी बाणी आप उचारी है, उस बाणी दे विचों ही पता लगता है कि जो अपना रियल सेल्फ डिस्कवर कर लेंदा है ना वो मर सकता है, ना उसनु पेन दिती जा सकती है, ना उसनु खत्म कीता जा सकता है, ना उसकी कोई जात है, ना आन जान वाली चीज है। ओ गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अकम्पलिशमेंट नु कह रहे हैं कि मैं तन भागी हां कि गुरु ने मेरे उत्ते कृपा की है, मेनू मेरा भरम दूर कर दिता है और मेनू दस दिता है कि मैं की हां। और गुरबाणी का मुख आशा टारगेट सिर्फ यही है कि असा भी अपनी लाइफ दे विच विच वाहिगुरु कृपा करे ये जानना है कि असी कौन। अज आप जी गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मना रहे हो तो गुरु अर्जन देव जी का एक सुनेहा लैके जाओ, गुरु अर्जन देव जी सानू सारिया नू एक साडे अंदर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है सुनो रे तू कौन कहां ते आयो। क्या इंसान सुन तू कौन है, तेन पता है कितों आया है, तेन पता है तेन कुछ नहीं पता। इस क्वेश्चन नू इतना बधाना चाहिदा है अंदर, दिन रात इस उते मेडिटेट करना चाहिदा है, दिन दे विच कितनी दफा इस थॉट नू लेना चाहिदा है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जो ये सवाल रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, पहला तो सवाल परिपक्व होना चाहिदा है,
ਜਦ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਓ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਤਾ ਪੂਛਤ ਕਹਿ ਜੀ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਜਗ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸੇ ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਖ ਹੋਏ ਭਰਮ ਪੰਗਾ ਹਮ ਹੋਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਨਫੁਲ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਉਨਕਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਉਹ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਪੂਰਨ

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुम वह करोगे तो तुम अपने ट्रू सेल्फ के नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गैट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावे करते जावे उस दे विच होर भी चीजा हैं जो अगली कीर्तन विचारियां जानगियां उतना असी अपने ट्रू सेल्फ के नजदीक पहुंचते जावे उतने ही शांत होंगे जावे उतने ही ट्रैंकुल होंगे जावे उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंगे जावे उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब ये नहीं कि वह कल्ले होंदे हैं. वह होंदे हैं परमात्मा दे नाल वह होंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन. उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निरासु उसकी ये अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरों महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आया। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, भाव के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह, वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

वस्तु काया दे अंदर है, अते जेड़े काया दे अंदरों उस वस्तु नू नहीं पहलदे नहीं ढूंढदे कहिंदे हो अति मूढ़ हन अति मूर्ख हन अते बेताले, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी सही चाल नहीं है। बेताल लोग हन, मूढ़ लोग हन, मूर्ख लोग हन। सो इस स्टैंडर्ड दे नाल, इस मेजरमेंट दे नाल, इस गेज दे नाल सारी सोसाइटी मूर्ख बन जाती है, क्योंकि बाहर पहलती है। सुगुरु बाबा जी की तालीम सानू समझा रही है कि इस जन्म दे विच तुसी कुछ पाण लई आए सी, अते ओ जो वस्तु है ओ तुहातों दूर नहीं। अगर तुहाडा कुछ भी जिंदगी च नुकसान हो गया है, कुछ भी तुहाडा खो गया है, नो मैटर हाउ मच यू फील दैट यू आर ए एब्सोल्यूटली फेल्यूअर, स्टिल वो जो पाउण वाली वस्तु वो तुहाडे अपने ही पास है, वो तुहाडे अपने अंदर है। सो तुसी कुछ भी खोया नहीं है। डिप्रेस होने की, होपलैसनैस च जाण की तुहाडे लिए कोई गुंजाइश नहीं छड़ी, क्योंकि आखिरले दम तक वो वस्तु जो तुसी पानी सी वो तुहाडे अपने अंदर, आखिरले दम तक जदों चाहो उस पासे नूं अपनी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हो। सो अगर असीं स्पष्ट तौर ते इतना ही गुरु बाबे दा उपदेश समझ लईए ते उसनूं धारण कर लईए कि असीं इस जन्म दे विच कुछ पाण आए सी अते ओ वस्तु जो पाण आए सी ओ साडे अपने अंदर है, हुण ये सवाल सानू पुछण वाला है कि असी अपने अंदरों कुछ लभ्या है या नहीं लभ्या। अगर असी अपने अंदरों कुछ नहीं लभ्या तो फिर असी चाले मूल गवाए, फिर असी सब कुछ खो के इतों जाण वाले लोग हाँ। अगर असी अपने अंदरों कुछ नहीं पाया नहीं खोजिया तो फिर असी अंधले लोग हाँ। तो गुरु बाबा जी फिर सानू देख के हैरान होके ये शब्द उचार के इस तरह गायन करते हैं, अंधले क्या पाया जागाए, ऐ अंधे इंसान तू जगत च आके की पाया है, आओ सारे नाले गाओ, नाले अपने अपने अंदरों अपने अपने आप नू ये पुछो कि वस्तु जड़ी मैं पाउनी सी महाराज दसदे हन वो मेरे अपने अंदर ही है, उसनू मैं अपने अंदरों पाया है या नहीं पाया, जे नहीं पाया तो मैं की कर रहा हाँ, करता रहा हाँ, अगे नूं हुण मेरा की विचार है। आओ प्यार नाल

सोचो नाल नाल। इस करके इस कीर्तन में आहिस्ता आहिस्ता करांगे ताकि सिंह रिफ्लेक्ट कर सकिए, अपने ते सवाल उठा सकिए, जाग सकिए, ते अपने अपने जीवन होर किसे दे नूं नहीं, अपने अपने जीवन ये पूछ सकिए कि मैं आके की पाया है, मैं की पाया है, अते पौन वाली वस्तु अंदर सी, उस अंदर वाली वस्तु नूं मैं पाया है जा नहीं पाया। जे नहीं पाया तो फिर हाले तक का जीवन मेरा वो वेस्ट गया है। महाराज जी आखते हैं भई तुहाडे अपने ही अंदर वस्तु सी, दूरों कितों लभण नहीं सी जाना, घरों बाहर जाने की भी जरूरत नहीं सी क्योंकि वो तुहाडे अपने अंदर है। अते उस अपने अंदर वाली वस्तु नूं तुसीं पा नहीं सके फिर माण कड़ी गल का करते, तुहानूं अपने आप से किस गल का माण है। और दूसरी गल, अपने आप नूं तुसीं स्याणे किवें समझदे हो। देखो अपने अंदरों ही एक ट्रेजर सी, वह तुसीं पाया नहीं, और उसके बावजूद भी अपने आप नूं तुसी स्याणे भी समझदे हो तो फिर माण पड़ी पता नहीं किस गल का करी बैठे हो। यह तो बहुत ही एक शर्मसारी वाली गल है कि साडे अंदर कोई अमलीक खजाना है, असी उसनूं ही नहीं देख सके, उसनूं ही नहीं पा सके, पाया कुछ भी नहीं, तो माण इतना वड्डा माण नाल असी भरे पए हैं, पता नहीं असी की पा लिया है। पता नहीं सी की पा लिया है। गुरु बाबा जी हुण शब्द उचारदे कहिंदे हन, ऐ भोलीए इंसान नूं आख्या है, भोलीए जिंदड़ीए तू केड़ी गल दा माण करदी है, किस गल दा माण करदी है। कहिंदे हन

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ए की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने, उसनु तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग गया की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनों कुछ किया जाए तो उसनों भी पता नहीं चल रहा, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनों भी कोई पता नहीं चल रहा कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हां, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रही है। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लईयां सुन लईयां फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना होई, जिंदगी उसे तरह दी ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत ये आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

हठ मजाहू मैं माणक लगा। कहिंदे हठ मैंने हिरदा, अपने हिरदे दे अंदरों ही एक मैं जूल कहिंदे प्राप्त कीता है, लभ्या है माणक, लभ्या है मुल ना किदा। कहिंदे ए मैं मुल नहीं खरीदया, ए मुल विकदा ही नहीं है, अपने ही अंदर है। पर सतगुरु की गाइडेंस दे नाल, असिस्टेंस दे नाल, सतगुरु की आशीर्वाद दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, कहिंदे सतगुरु दा बन के सतगुरु ने मेरे ते कृपा करके मैनू रस्ता समझाया, ढंग समझाया, ते ए माणक, ए ज्यूल, ए ट्रेजर कहिंदे मैं अपने हिरदे दे विचों लभ लिया। कमाल है वो जीवन, तन है वो जीवन, उस जीवन नू निमस्कार। जिन्हां जिन्हां ने कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपनी बाणी च दस्या। गुरु अर्जन देव जी आखदे ने पाया लाल रतन मन पाया, अपने मन दे विच ही पा लिया। पाया लाल रतन मन पाया, पाया लाल रतन मन पाया। कहिंदे मैं लाल पा लिया, रतन पा लिया। स्वामी भगत बाणी दे विच आखदे हन, स्वामी रामानंद जी कहिंदे हन,

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसनु खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत च मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है। अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नूं चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां, वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धुई फिरदी है, ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू यह ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसनु रोकना चाहे वो रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, ते इस नू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दियां आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहण तो बाद आप सारे बोले, तो ये पंक्ति आपनूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुला नू खुश हुंदे बगीचे वाले झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली हुई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नू आखन लगा, ऐ राही आ मैं तेनू अपना बगीचा विखावां। किदे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया आखन लगा, रात नू आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा। जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नू मिद मिद के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां तले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ए पल्लां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मूंह दे के रोई जांदे, ए हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा, हुण विखा अपना बगीचा। ए राही दा हथ फड़ के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे औ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नू पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटा विच। ऐ मनुष्य

नरम कार्य हो। तन गुरु नानक के पास कहा, वेन नदी चुप्पी मार के खट खंड के खट खंड मान लो शायद आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर से पहुंच गए कि नारद वे नदी डूब देवी नानकी में कई ने जाती किया जैसे मेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जमीन कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता वो तो डूबिया उतारना पशु परेत मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड बन सचखंड वे नरम अगे नूर ही नूर जानना ही जानना उस जोर के अंदर जाके हजूर नीर हो गए जो जर में जर आए खटाना क्या ज्योति सन जोत कुछ समय के बाद उस जोड़े विचों सोना कांत आ के सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तुहानू मात लोग कल भी जीवन उद्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए। सतगुरु ने किया मेरे दादा जी पहले दसो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते सहबाने से सब कुछ आ गया जित दर लख मोहम्मदा दर ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्होंने अपने नींद क्यों नहीं आवाज आई नानक मैं इन्होंने दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाया अपने घर की अपनी जनानिया का नाम नहीं है इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे बिच नींद नहीं बनी साहबान ने हथ अरदास की वाहेगुरु फिर करो कृपा असि मात लोग जाके की दुनिया नहीं तो उस अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक नमकारी नाम महा

ऐसों से संदूष के पाख्या जी समाधि आवाज ज्ञान की कर रहे हो तो हजूर कह

सगळे सुरजण एकाच विषयाची आपले सारिती मूल मंत्र का जाप करे संत बड़ा महान बड़ी शक्ति है। यह दंकारी मंत्र जितना जप लो यह बड़ा काम तुरदिया फिर उठ दया बहदिया हर नाम और नाम वाहगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक सुखी पर लोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और

ये लाल लाल दे विच भगत कबीर जी ने इसको गाया है अते दास सिंह राग हमीर दे विच ये प्रताप ते हमीर राग भी केदारे दे नाल मिलता जुलता राग है। सो आओ भगत कबीर जी दा पावन चलत कर टेढ़े टेढ़े टेढ़े मनु च अहंकार कदर टेढ़ा टेढ़ा उन चलता है। भगत कबीर जी कहते हैं किस तरह का अहंकार करता है कि तेरे अंदर अष्ट चरण विष्टा के होंगे ये हड्डिया ते विष्टा ते गंदगी दे नाल तेनू चमड़ी दे नाल पेटा है। तो आओ

जो आपने सारे गुरु साहब जी जी बैठ के गुरु दरबार हरी जस द्वारा हरी कीर्तन द्वारा बसाया जा रहा है। हरी नाम रूपों के झुके अपना मनुखी जीवन हरी पास बना रहे। सो आओ अंत जितनी संगत बैठी है, चेतन करके बैठे हो,

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।